0: this world he was made as the son of man.
1: जब इस दुनिया में आए वो मनुष्य के पुत्र बन गए.
0: But after his resurrection he went back to heaven as the high priest.
1: जब वो स्वर्ग में वापस गए तो वो महायाजक या बड़ा काहिन बनकर गए.
0: The book of Hebrew presents Jesus as the most high priest.
1: और इब्रानियों के खत में यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर पहचाना गया.
0: The Bible says the book of 1 John chapter 2 verse 1.
1: और दूसरा पहला अध्याय जो है पहला यूहन्ना उसके दूसरे खत में लिखा है.
0: It says my little children I write these things to you that you do not sin.
1: और वो कहता है कि मैं इसलिए आपको ये खत लिखता हूँ कि आप गुनाह ना करें.
0: If someone has sinned,
1: अगर किसी ने गुनाह करा है,
0: we have a great advocate that is Jesus Christ on the right hand of the Father.
1: हमारे पास बड़ा एक वकील है जो खुदावंद के लिए और

0: और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु

0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करें।
0: दुख जो हमें याद आए,
1: दुख जो हमें याद आए,
0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करेंगे।
0: मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना,
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,

0: आपकी बारी है, गाइए मैं और मेरा घराना।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु मसीह से बात करेंगे,
0: यीशु मसीह से प्यार करेंगे।

beautiful smile. Yes, go. सब तैयार है? आप तैयार हैं? Amen. जल्दी से आओ, जल्दी से आओ. Time नहीं है हमारे पास. जल्दी से आओ. Come on, everybody. Are you ready, girls? Okay, let's have the music, brother. साथ

हालेलुया जी, हम खुदावन का शुक्र करेंगे जिसने प्रसिस में और गीतों में हमारी रहनमाई की। हम उसका शुक्र करें क्योंकि वो ही जलाल का बादशाह है और वो यक्षा है और वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो है हम जबूर नंबर 118 में

0: के दौरान मैं बता चुका हूँ कि विजय बेनेडिक्ट जो है मुंबई इंडिया से हैं.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: आज पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में आए हैं.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: मैं अजीज खुदावन के दास को काफी सालों से जानता हूँ.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: तो खुदावन के दास बड़े सामर्थ्य के साथ अभिषेक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तान और दुनिया के कई जगहों में.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: खुदावन की प्रस्तुति के गीतों में अगुवाई करने से पहले वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में गाया करते थे.
1: बिफोर ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू लीडिंग प्रेज एंड वर्शिप फॉर गॉड्स ग्लोरी ही यूज्ड टू वर्क इन हॉलीवुड इन बॉलीवुड.
0: पर उसके बाद खुदा ने उनको फुल टाइम के लिए अपनी खिदमत के लिए अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया.
1: बट देयरआफ्टर द लॉर्ड कॉल्ड हिम फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री अनटू हिमसेल्फ.
0: तो आज वो बिजी हैं खुदा की खिदमत उनकी सेवकाई दुनिया भर में जो है गीत संगीत प्रस्तुति के द्वारा से.
1: सो टुडे ही इज बिजी ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्रू प्रेज एंड वर्शिप एंड म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड.
0: उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ हमारे बीच में आई हुई हैं.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: मैं ना ज्यादा बताकर वो खुद उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे बताएंगे.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: जिस तरह से हम हर बार अपने अजीज अपने जो गेस्ट हैं उनको हम स्वीकार करते हैं आज भी उसी तरीके से उनको स्वीकार किया जाएगा.
1: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
0: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
1: Amen. Pastor Vijay, आप आएंगे और हमें प्रभु यीशु के बारे में प्लीज बताएंगे.
0: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
1: आइए एक बार फिर इनका स्वागत करें. खुदावन को सारा जलाल सारी महिमा मिले.
0: Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, Yeshua Masih, Yeshua Masih.

यीशु मसीह के नाल रोज चलना है, रोज बाइबल पढ़नी है, रोज दुआ करनी है, रोज यीशु मसीह का नारा लाना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की।

तो उस जमाने के जो फकीर थे, जो सरदार थे, वो उसको पकड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए कि खुदावंद यीशु मसीह पर फतवा लगाए। वो उसको मारते हुए, उसको जिद करते हुए, उसको लहूलुहान करके वो खुदावंद के पास ले आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त ये फरमाया कि तुमने इसको पहला पत्थर वो शख्स मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। तो वो औरत खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी और रोना शुरू कर दिया। तो उसी सोच को, उसी मंजर की निकासी करते हुए शायद इस गीत में बड़ी खूबसूरत से पास

डियर फ्रेंड्स इन जीसस नेम, आप सभी का मैं बैतलहम पंजाबी चर्च की इस वेबसाइट में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं आप शायद इस वेबसाइट पर अचानक से आ गए होंगे, या गलती से आपका यहां पर आना हो गया होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, परंतु आप इस दुनिया में अचानक से नहीं है, आप एक्सीडेंट से नहीं है, या किसी गलती का नतीजा नहीं है। परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद और योजना के साथ भेजा है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को उतना ही गंभीरता और संजीदगी और सीरियसनेस के साथ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक मकसद रखा है। पवित्र वाणी कहती है कि आप इस दुनिया में निराश होने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और दुनिया भर के उलझनों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, जो कि आपको आशीष करें, आपको बरकत दें, आपको जिंदगी की ऐसी अच्छी चीजों से नवाजें कि आप एक खुशहाल, शांति भरी, भरपूर जिंदगी जी सकें। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को जानें। आज अगर आप किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जानें अपनी जिंदगी में, अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानकर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में एक भरपूर जिंदगी को ग्रहण करें। वाणी कहती है कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें भेजा है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। आप इस वेबसाइट में जैसे ब्राउज करते हैं, बहुत सी चीजें आपके लिए है। आपके लिए यहाँ पर पवित्र वचन के सॉन्ग्स है, वर्शिप सॉन्ग है, म्यूजिक है, बहुत से आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए, ताकि आप और परमेश्वर को नजदीकी से जान सकें। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर को जान सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़कर किताबों के जरिए से, बाइबल के पवित्र वचनों से, और कई और चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, ताकि आप गवाहियों को पढ़कर भी और मजबूत हो जाएं। मेरी प्रार्थना विनती यह है कि आप प्रभु को और नजदीकी से जानें। बैतलहम पंजाबी चर्च की सेवकाई आपके लिए इसीलिए है कि आपको बरकत दें, आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए और आपकी सेवकाई करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्ट है, हमें लिखिएगा, प्रार्थना की विनती भी हमें लिखिएगा, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एज यू कंटिन्यू टू ब्राउज दिस वेबसाइट एंड एंजॉय गॉडली वंडरफुल म्यूजिक, वर्शिप सॉन्ग्स एंड रीड आर्टिकल्स एंड नो गॉड ऑल द मोर। गॉड ब्लेस यू, रिपेंट ऑफ योर सिंस, नो गॉड पर्सनली एंड ड्रो क्लोजर टू हिम, worship him, find a good church and be there. If you want to come to us, find out our address.

0: this world, he was made as the Son of Man.
1: जब इस दुनिया में आए वो मनुष्य के पुत्र बन गए.
0: But after his resurrection, he went back to heaven as the high priest.
1: जब वो स्वर्ग में वापस गए तो वो महायाजक या बड़ा काहिन बनकर गए.
0: The book of Hebrew presents Jesus as the most high priest.
1: और इब्रानियों के खत में यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर पहचाना गया.
0: The Bible says the book of 1 John chapter 2 verse 1.
1: और दूसरा पहला अध्याय जो है पहला यूहन्ना उसके दूसरे पत्र में लिखा है.
0: It says, my little children, I write these things to you that you do not sin.
1: और वो कहता है कि मैं इसलिए आपको ये खत लिखता हूँ कि आप गुनाह ना करें.
0: If someone has sinned,
1: अगर किसी ने गुनाह करा है,
0: we have a great advocate that is Jesus Christ on the right hand of the Father.
1: हमारे पास बड़ा एक वकील है जो खुदावंद के और परमेश्वर के दाहिने

0: अनिल कांत बड़े अजीज हैं हमारे खानदान के साथ, हमारे साथ, और ये दूसरी बार या तीसरी बार हमारा जो है कॉन्सर्ट टुगेदर है.
1: And Pastor Anil Kant is a brother who's very dear to us. He has a great relationship with our church, with the family, extended family. And you know, this is probably the second or probably third time that he's here with us doing a concert.
0: खुदावन के दास कई जगहों पर खुदावन की सेवकाई को प्रस्तिष्ठ के थ्रू और मसीही सत्संग के थ्रू प्रचार रहे हैं.
1: And the servant of the Lord worships God and does ministry through the worship music ministry and also through Christian satsangs all over the world.
0: उनके बारे में मुझे इतना elaborate introduction देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों उनको जानते हैं, उनकी CDs, उनके worship, YouTube पर, internet पर, CDs के थ्रू already आप सुन चुके हैं और आप जानते हैं.
1: We don't need to give you a big introduction for them because a number of you know about them, you follow them on the internet, you listen to their CDs and you know their ministry and the work that they do for God.
0: किस तरह से खुदा हमने उनको एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस में मुंबई शहर में रखा है खुदा उनकी खिदमत को वहां से स्प्रेड आउट करने के लिए.
1: How God has placed them in a strategic city of Mumbai where they spread the word of God right from Bombay.
0: और वहां से खुदा उनकी खिदमत जगह जगह पर और वहां पर लोकल एरिया में भी कर रहे हैं.
1: And they do the ministry of the Lord from Bombay all over the world and also locally within Bombay.
0: वो सिर्फ गॉस्पल सिंगर नहीं हैं.
1: They're not just gospel singers.
0: वो खुदा उनकी खिदमत में लगे हुए हैं.
1: They are ministers of God.
0: Serving and winning souls.
1: जो रूहों को बचाते हैं, उनको जीतते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए.
0: मसीही सत्संग इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर.
1: और मसीह सत्संग जो है वो बिल्कुल आग के लपटों की तरह फैल रही है.
0: तो फिर इसलिए मेरे हृदय में उनके लिए सिर्फ गॉस्पल सिंगिंग की जगह नहीं है, वो इससे ज्यादा बढ़कर हैं, पूरे खानदान के साथ लगे हुए हैं.
1: एंड दैट इज व्हाई इन माय हार्ट द प्लेस दैट आई हैव फॉर देम इज नॉट जस्ट दैट ऑफ गॉस्पल सिंगर्स बट दोज हु डू मिनिस्ट्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड विद देयर होल हाउसहोल्ड.
0: उसके साथ साथ मैं उनको रियली सल्यूट करता हूं आज की शाम.
1: एंड टुनाइट आई जस्ट वांट टू सल्यूट देम.
0: अपने खानदान को खुदावन की खिदमत में लगाया हुआ है.
1: इट्स बिकॉज़ दे ब्रॉट देयर होल हाउसहोल्ड इनटू द सर्विस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड.
0: उनका रिजल्ट आज हमारे साथ है.
1: एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज राइट हियर विद अस.
0: आमेन.
1: आमेन.
0: विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स वेलकम अनिल कांत और श्रिया कांत इन आवर मिडस्ट.
1: और वक्त जाया ना करते हुए आइए स्वागत करते हैं ब्रदर अनिल कांत और उनकी बेटी श्रिया कांत का हमारे बीच में. हालेलुया.
0: ब्रदर कम एंड टेल अस अबाउट जीसस क्राइस्ट वंस अगेन.
1: आइए आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के बारे में हमें बताएं आज. गॉड ब्लेस यू.
2: जय यीशु मसीह की. हालेलुया. पास्टर जतिंदर गिल जी ने जो बातें कही इज जस्ट व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड अस टू डू. यू नो ईच वन ऑफ अस, नॉट जस्ट मी एंड माय हाउसहोल्ड, एवरी फैमिली दैट इज हियर टुनाइट, अ लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ फैमिलीज. And he has called each and every family, every husband and wife, every child and every young and old person to serve the Lord with, and love him with all your heart and all your soul and all your might and all your mind. Bolo Yeshu Masih ki. And I, mera bahut gehra rishta Punjabi Bethlehem Church ke saath hai. Aur brother Jatinder Gill, Pastor Jatinder Gill, hum hamesha touch mein rehte hain. Even on the Facebook, even we keep talking to each other. And when I was coming here, jab Pastor Jatinder ne bola ki, it's a good opportunity ki hum yahan par aa sakte hain. I was overjoyed, Pastor, that you opened your church for us. Thank you so much. We just thank you. And Bethlehem Punjabi Church. Bethlehem yane roti ka ghar. Lehem yane roti, Beth yane ghar. और ये जो घर है ये रोटी का घर है, और वो रोटी जो जिंदा मसीह के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आई है, वो रोटी जिसको हम खुदा का कलाम कहते हैं, वो रोटी जो खाए

वो कभी भूखा ना रहे, वो पानी जो पिए वो कभी प्यासा ना रहे। हालेलुया। तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। खुदावंद खुदावंद आपका कलाम कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और खुदावंद आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हम आपका सामर्थ मांगते हैं, आज हम आपकी हुजूरी मांगते हैं और हम आपकी खुदावंद वो प्रेजेंस मांगते हैं खुदावंद, जो टेंजिबल प्रेजेंस जिसको हम छू सकते हैं खुदावंद, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आप जिंदा हैं और हम जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा को जानते हैं। खुदा कलाम कहता है कि यही नजात है कि हम सच्चे खुदा को जाने, और हम नजात पाए हैं क्योंकि हमने खुदा को जान लिया है और उसके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है और उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदावंद आज इस कांग्रीगेशन में, आज इन लोगों के अंदर इस जमात में जितने लोग बैठे हैं खुदावंद, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम आज हम सबको करना, आपने पूरे ट्रैफिक इन सब मुसीबतों के बीच में से हमको निकाल के यहां पहुंचाया, इसका मतलब आपकी कुछ मर्जी है आज की शाम और वो मर्जी पूरी होगी, शैतान उसको बदल नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बढ़ा दीजिए।

0: बोलिए मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे।

0: मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु

0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करें,
0: दुख जो हमें याद आए,
1: दुख जो हमें याद आए,
0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करेंगे,
0: मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना,
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,

beautiful smile. Yes, go. सब तैयार हैं? आप तैयार हैं? Amen. जल्दी जाते, जल्दी जाते. Time नहीं है हमारे पास. जल्दी जाते. Come on, everybody. Are you ready, girls? Okay, let's have the music, brother. साथ में.

हालेलुया जी, हम खुदावन का शुक्र करेंगे जिसने प्रशिश में और गीतों में हमारी रहनुमाई की। हम उसका शुक्र करें क्योंकि वही जलाल का बादशाह है और वो यक्षा है और वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो है हम जबूर नंबर 118 में जो है

जी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदा उनका शुक्र करेंगे, हालेलुया। और जितने भी हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम उन सब को सलाम पेश करते हैं और उन सब की सलामती चाहते हैं, जहां जहां पर भी हुए हैं। खुदा उनको बरकत दे और खुदा उनके घरों में से तमाम तर जो अपनी सिकुवतें हैं हम उनको बांध देते हैं यीशु के नाम से, और खुदा उनका शुक्र करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। रबा सिंथी रिया रजा मंथारा रजा रबा सिंथी क्रिया रजा मंथा शरदिया ओरे बे बे शिवरे दिया रजा मंथारा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी सताइश और जलाल के बादशाह, हम उन तमाम तर लोगों के लिए, उन तमाम तर बहनों भाइयों बुजुर्गों बेटों और बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं जो इस वीडियो को देखे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके घरों में से कमजोरियां जाती रहें, बद्रूहें छोड़ दें इनके घरों को, लोग आजाद हो जाएं। और खुदावन हम उन सब के लिए बरकत चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, इस प्रस्तुति के वसीला से खुदावन बड़ी बरकत मिले खुदावन, और ताकि वो तुझमें बढ़ते जाएं और हमें से और खुदावन जो हमें सुन रहे हैं इनमें से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए, और तुझमें बढ़ते रहें और तेरी प्रस्तुति और हमदो सना इसी तरह करते रहें। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी स्ताइश हो, इसी यीशु के अजीम और खूबसूरत नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: के दौरान मैं बता चुका हूँ कि विजय बेनेडिक्ट जो है मुंबई इंडिया से हैं.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: आज पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में आए हैं.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: मैं अजीज खुदावन के दास को काफी सालों से जानता हूँ.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: तो खुदावन के दास बड़े सामर्थ के साथ अभिषेक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तान और दुनिया के कई जगहों में.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: खुदावन की प्रसिद्ध के गीतों में अगुवाई करने से पहले वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में गाया करते थे.
1: बिफोर ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू लीडिंग प्रेज एंड वर्शिप फॉर गॉड्स ग्लोरी ही यूज्ड टू वर्क इन हॉलीवुड इन बॉलीवुड.
0: पर उसके बाद खुदा ने उनको फुल टाइम के लिए अपनी खिदमत के लिए अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया.
1: बट देयरआफ्टर द लॉर्ड कॉल्ड हिम फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री अनटू हिमसेल्फ.
0: तो आज वो बिजी हैं खुदावन की खिदमत उनकी सेवकाई दुनिया भर में जो है गीत संगीत प्रस्तुति के द्वारा से.
1: सो टुडे ही इज बिजी ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्रू प्रेज एंड वर्शिप एंड म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड.
0: उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ हमारे बीच में आई हुई हैं.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: मैं ना ज्यादा बताकर वो खुद उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे बताएंगे.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: जिस तरह से हम हर बार अपने अजीज अपने जो गेस्ट हैं उनको हम स्वीकार करते हैं आज भी उसी तरीके से उनको स्वीकार किया जाएगा.
1: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
0: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
1: Amen. Pastor Vijay, आप आएंगे और हमें प्रभु यीशु के बारे में प्लीज बताएंगे.
0: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
1: आइए एक बार फिर इनका स्वागत करें. खुदावन को सारा जलाल सारी महिमा मिले.
0: Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, Yeshua Masih, Yeshua Masih.

Beleza. तो उस जमाने के जो फकीर ऋषि थे, जो सरदार थे, वो उसको पकड़ कर खुदा यीशु मसीह के पास ले आए कि खुदा यीशु मसीह पर फतवा लगाए। वो उसको मारते हुए, उसको जिज करते हुए, उसको लहूलुहान करके वो खुदा के पास ले आए। तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त ये फरमाया कि तुमने इसको पहला पत्थर वो शख्स मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। तो वो औरत खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी और रोना शुरू कर दिया। तो उसी सोच को, उसी मंजर की इक्कासी करते हुए शायद इस गीत ने बड़े खूबसूरत से पास किया।

डियर फ्रेंड्स इन जीसस नेम, आप सभी का मैं बैतलहम पंजाबी चर्च की इस वेबसाइट में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं आप शायद इस वेबसाइट पर अचानक से आ गए होंगे, या गलती से आपका यहां पर आना हो गया होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, परंतु आप इस दुनिया में अचानक से नहीं है, आप एक्सीडेंट से नहीं है, या किसी गलती का नतीजा नहीं है। परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद और योजना के साथ भेजा है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को उतना ही गंभीरता और संजीदगी और सीरियसनेस के साथ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक मकसद रखा है। पवित्र वाणी कहती है कि आप इस दुनिया में निराश होने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और दुनिया भर के उलझनों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, जो कि आपको आशीष करें, आपको बरकत दें, आपको जिंदगी की ऐसी अच्छी चीजों से नवाजें कि आप एक खुशहाल, शांति भरी, भरपूर जिंदगी जी सकें। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को जानें। आज अगर आप किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जानें अपनी जिंदगी में, अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानकर प्रभु यीशु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में एक भरपूर जिंदगी को ग्रहण करें। वाणी कहती है कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें भेजा है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। आप इस वेबसाइट में जैसे ब्राउज करते हैं, बहुत सी चीजें आपके लिए है। आपके लिए यहाँ पर पवित्र वचन के सॉन्ग्स है, वर्शिप सॉन्ग है, म्यूजिक है, बहुत से आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए, ताकि आप और परमेश्वर को नजदीकी से जान सकें। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर को जान सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़कर किताबों के जरिए से, बाइबल के पवित्र वचनों से, और कई और चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, ताकि आप गवाहियों को पढ़कर भी और मजबूत हो जाएं। मेरी प्रार्थना विनती यह है कि आप प्रभु को और नजदीकी से जानें। बैतलहम पंजाबी चर्च की सेवकाई आपके लिए इसीलिए है कि आपको बरकत दें, आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए और आपकी सेवकाई करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्ट है, हमें लिखिएगा, प्रार्थना की विनती भी हमें लिखिएगा, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एज यू कंटिन्यू टू ब्राउज दिस वेबसाइट एंड एंजॉय गॉडली वंडरफुल म्यूजिक, वर्शिप सॉन्ग्स एंड रीड द आर्टिकल्स एंड नो गॉड ऑल द मोर। गॉड ब्लेस यू, रिपेंट ऑफ योर सिंस, नो गॉड पर्सनली एंड ड्रो क्लोजर टू हिम। Worship him, find a good church and be there. If you want to come to us, find out our address.

0: this world he was made as the son of man.
1: जब इस दुनिया में आए वो मनुष्य के पुत्र बन गए.
0: But after his resurrection he went back to heaven as the high priest.
1: जब वो स्वर्ग में वापस गए तो वो महायाजक या बड़ा काहिन बनकर गए.
0: The book of Hebrew presents Jesus as the most high priest.
1: और इब्रानियों के खत में यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर पहचाना गया.
0: The Bible says the book of 1 John chapter 2 verse 1.
1: और दूसरा पहला अध्याय जो है पहला यूहन्ना उसके दूसरे खत में लिखा है.
0: It says my little children I write these things to you that you do not sin.
1: और वो कहता है कि मैं इसलिए आपको ये खत लिखता हूँ कि आप गुनाह ना करें.
0: If someone has sinned,
1: अगर किसी ने गुनाह करा है,
0: we have a great advocate that is Jesus Christ on the right hand of the Father.
1: हमारे पास बड़ा एक वकील है जो खुदावंद के और परमेश्वर के दाहिने

0: भाई अनिल कांत बड़े अजीज हैं हमारे खानदान के साथ, हमारे साथ, और ये दूसरी बार या तीसरी बार हमारा जो है कॉन्सर्ट टुगेदर है.
1: And Pastor Anil Kant is a brother who's very dear to us. He has a great relationship with our church, with the family, extended family. And you know, this is probably the second or probably third time that he's here with us doing a concert.
0: खुदावन के दास कई जगहों पर खुदावन की सेवकाई को प्रस्तिश के थ्रू और मसीही सत्संग के थ्रू प्रचार रहे हैं.
1: And the servant of the Lord worships God and does ministry through the worship music ministry and also through Christian satsangs all over the world.
0: उनके बारे में मुझे इतना elaborate introduction देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों उनको जानते हैं, उनकी सीरीज, उनके worship YouTube पर, internet पर, सीरीज के थ्रू already आप सुन चुके हैं और आप जानते हैं.
1: We don't need to give you a big introduction for them because a number of you know about them, you follow them on the internet, you listen to their series and you know their ministry and the work that they do for God.
0: किस तरह से खुदा हमने उनको एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस में मुंबई शहर में रखा है खुदा उनकी खिदमत को वहां से स्प्रेड आउट करने के लिए.
1: How God has placed them in a strategic city of Mumbai where they spread the word of God right from Bombay.
0: और वहां से खुदा उनकी खिदमत जगह जगह पर और वहां पर लोकल एरिया में भी कर रहे हैं.
1: And they do the ministry of the Lord from Bombay all over the world and also locally within Bombay.
0: वो सिर्फ गॉस्पल सिंगर नहीं हैं.
1: They're not just gospel singers.
0: वो खुदा उनकी खिदमत में लगे हुए हैं.
1: They are ministers of God.
0: Serving and winning souls.
1: जो रूहों को बचाते हैं, उनको जीतते हैं खुदा यीशु मसीह के लिए.
0: मसीही सत्संग इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर.
1: और मसीही सत्संग जो है वो बिल्कुल आग के लपटों की तरह फैल रही है.
0: तो फिर इसलिए मेरे हृदय में उनके लिए सिर्फ गॉस्पल सिंगिंग की जगह नहीं है, वो इससे ज्यादा बढ़कर हैं, पूरे खानदान के साथ लगे हुए हैं.
1: एंड दैट इज व्हाई इन माय हार्ट द प्लेस दैट आई हैव फॉर देम इज नॉट जस्ट दैट ऑफ गॉस्पल सिंगर्स बट दोज हु डू मिनिस्ट्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड विद देयर होल हाउसहोल्ड.
0: उसके साथ साथ मैं उनको रियली सल्यूट करता हूं आज की शाम.
1: एंड टुनाइट आई जस्ट वांट टू सल्यूट देम.
0: अपने खानदान को खुदा उनकी खिदमत में लगाया हुआ है.
1: इट्स बिकॉज दे ब्रॉट देयर होल हाउसहोल्ड इनटू द सर्विस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड.
0: उनका रिजल्ट आज हमारे साथ है.
1: एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज राइट हियर विद अस.
0: आमेन.
1: आमेन.
0: विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स वेलकम अनिल कांत और श्रिया कांत इन आवर मिस्ट.
1: और वक्त जाया ना करते हुए आइए स्वागत करते हैं ब्रदर अनिल कांत और उनकी बेटी श्रिया कांत का हमारे बीच में. हालेलुया.
0: ब्रदर कम एंड टेल अस अबाउट जीसस क्राइस्ट वंस अगेन.
1: आइए आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के बारे में हमें बताएं आज. गॉड ब्लेस यू.
2: जब यीशु मसीह की हालेलुया. पास्टर जतिंदर गिल जी ने जो बातें कही इज जस्ट व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड अस टू डू. यू नो ईच वन ऑफ अस, नॉट जस्ट मी एंड माय हाउसहोल्ड, एवरी फैमिली दैट इज हियर टुनाइट, अ लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ फैमिलीज. And he has called each and every family, every husband and wife, every child and every young and old person to serve the Lord with, and love him with all your heart and all your soul and all your might and all your mind. Bolo Yeshu Masih ki. And I, mera bahut gehra rishta Punjabi Bethlehem Church ke saath hai. Aur brother Jatinder Gill, Pastor Jatinder Gill, hum hamesha touch mein rehte hain. Even on the Facebook, even we keep talking to each other. And when I was coming here, jab Pastor Jatinder ne bola ki it's a good opportunity ki hum yahan par aa sakte hain, I was overjoyed, Pastor, that you opened your church for us. Thank you so much. We just thank you. And Bethlehem Punjabi Church, Bethlehem yane roti ka ghar, Lehem yane roti, Beth yane ghar. और ये जो घर है ये रोटी का घर है, और वो रोटी जो जिंदा मसीह के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आई है, वो रोटी जिसको हम खुदा का कलाम कहते हैं, वो रोटी जो खाए वो कभी भूखा ना रहे, वो पानी जो पिए वो कभी प्यासा ना रहे. हालेलुया. तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. सबसे पहले प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सबको यहां पर इकट्ठा किया. खुदावन खुदावन आपका कलाम कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरमियान मौजूद हूं. और खुदावन आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है. पवित्र आत्मा हम आपका सामर्थ मांगते हैं. आज हम आपकी हुजूरी मांगते हैं और हम आपकी खुदावन वो प्रेजेंस मांगते हैं खुदावन, जो टेंजिबल प्रेजेंस जिसको हम छू सकते हैं खुदावन, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आप जिंदा हैं और हम जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा को जानते हैं. खुदा कलाम कहता है कि यही नजात है कि हम सच्चे खुदा को जाने, और हम नजात पाए हैं क्योंकि हमने खुदा को जान लिया है. और उसके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है और उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदावन्द आज इस कांग्रीगेशन में, आज इन लोगों के अंदर, इस जमात में जितने लोग बैठे हैं खुदावन्द, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा खुदावन्द, क्योंकि खुदावन्द एक बड़ा काम आज हम सबको करना, आपने पूरे ट्रैफिक इन सब मुसीबतों के बीच में से हमको निकाल के यहां पहुंचाया, इसका मतलब आपकी कुछ मर्जी है आज की शाम, और वो मर्जी पूरी होगी, शैतान उसको बदल नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बढ़ा दीजिए।

0: बोलिए मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलें,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे।

0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करें।
0: दुख जो हमें याद आए,
1: दुख जो हमें याद आए,
0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करेंगे।
0: मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना,
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,

0: आपकी बारी है, गाइए मैं और मेरा घराना।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु मसीह से बात करेंगे,
0: यीशु मसीह से प्यार करेंगे।

beautiful smile. Yes, go. सब तैयार हैं? आप तैयार हैं? Amen. जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से आ जाओ. Come on, everybody. Are you ready, girls? Okay, let's have the music, brother.

ऐसा बोमतो तालियां बजाओ, खुदावन के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहिब है, वो तमाम रूह जमीन का शहंशाह है। हालेलुया। प्रस्तिश में बढ़ते हुए वो 92 गाएंगे।

हालेलुया जी, हम खुदावन का शुक्र करेंगे जिसने प्रशिश में और गीतों में हमारी रहनुमाई की। हम उसका शुक्र करें क्योंकि वो ही जलाल का बादशाह है और वो यक्षा है और वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो है हम जबूर नंबर 118 में

जी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, खुदा उनका शुक्र करेंगे। हालेलुया। और जितने भी हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं और उन सब की सलामती चाहते हैं। जहां जहां पर भी हुए हैं, खुदा उनको बरकत दे और खुदा उनके घरों में से तमाम तर जो अपनी शिकवतें हैं हम उनको बांध देते हैं यीशु के नाम से। और खुदा उनका शुक्र करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। रबा सिंथी या रजा मंथा रज रबा सिंथी क्रिया रजा मंथा शब्द खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी सताइश और जलाल के बादशाह। हम उन तमाम तर लोगों के लिए, उन तमाम तर बहनों भाइयों बुजुर्गों बेटों और बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं जो इस वीडियो को देखे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके घरों में से कमजोरियां जाती रहें, बद्रूहें छोड़ दें इनके घरों को, लोग आजाद हो जाएं। और खुदावन हम उन सब के लिए बरकत चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस प्रस्तुति के वसीला से खुदावन बड़ी बरकत मिले खुदावन, और ताकि वो तुझ में बढ़ते जाएं और हमें से, और खुदावन जो हमें सुन रहे हैं इनमें से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आए, वो तुझमें बढ़ते रहें और तेरी प्रस्तुति और हमदो सना इसी तरह करते रहें। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी स्ताइश हो, इसी यीशु के अजीम और खूबसूरत नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जी। हालेलुया। हालेलुया।

0: Mumbai, India से हैं.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: आज पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में आए हैं.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: मैं अजीज खुदावन के दास को काफी सालों से जानता हूँ.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: तो खुदावन के दास बड़े सामर्थ के साथ अभिषेक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तान और दुनिया के कई जगहों में.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: खुदावन की प्रस्तुति के गीतों में अगुवाई करने से पहले वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में गाया करते थे.
1: बिफोर ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू लीडिंग प्रेज एंड वर्शिप फॉर गॉड्स ग्लोरी ही यूज्ड टू वर्क इन हॉलीवुड इन बॉलीवुड.
0: पर उसके बाद खुदा ने उनको फुल टाइम के लिए अपनी खिदमत के लिए अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया.
1: बट देयरआफ्टर द लॉर्ड कॉल्ड हिम फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री अनटू हिमसेल्फ.
0: तो आज वो बिजी हैं खुदावन की खिदमत उनकी सेवकाई दुनिया भर में जो है गीत संगीत प्रस्तुति के द्वारा से.
1: सो टुडे ही इज बिजी ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्रू प्रेज एंड वर्शिप एंड म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड.
0: उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ हमारे बीच में आई हुई हैं.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: मैं ना ज्यादा बताकर वो खुद उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे बताएंगे.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: जिस तरह से हम हर बार अपने अजीज अपने जो गेस्ट हैं उनको हम स्वीकार करते हैं आज भी उसी तरीके से उनको स्वीकार किया जाएगा.
1: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
0: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
1: Amen. Pastor Vijay, आप आएंगे और हमें प्रभु यीशु के बारे में प्लीज बताएंगे.
0: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
1: आइए एक बार फिर इनका स्वागत करें. खुदावन को सारा जलाल सारी महिमा मिले.
0: Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, Yeshua Masih. Yeshua, Yeshua. Masih.

Gitte. Jab ek aurat ho raha hai, bas kaam karte hue ek fitri club mein pakdi gayi thi, to us zamane ke jo fakir rishi the, jo sardar the, wo usko pakad kar खुदा यीशु मसीह के पास ले आए कि खुदा यीशु मसीह पर फतवा लगाए। वो उसको मारते हुए, उसको जिद करते हुए, उसको लहूलुहान करके खुदा के पास ले आए। तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त ये फरमाया कि तुमने इसको पहला पत्थर वो शख्स मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो वो औरत खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी और रोना शुरू कर दिया। तो उसी सोच को, उसी मंजर की इक्कासी करते हुए शायद इस गीत में बड़ी खूबसूरत से पास।

0: this world, he was made as the Son of Man.
1: जब इस दुनिया में आए वो मनुष्य के पुत्र बन गए.
0: But after his resurrection, he went back to heaven as the high priest.
1: जब वो स्वर्ग में वापस गए तो वो महायाजक या बड़ा काहिन बनकर गए.
0: The book of Hebrew presents Jesus as the most high priest.
1: और इब्रानियों के खत में यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर पहचाना गया.
0: The Bible says the book of 1 John chapter 2 verse 1.
1: और दूसरा पहला अध्याय जो है पहला यूहन्ना उसके दूसरे खत में लिखा है.
0: It says, my little children, I write these things to you that you do not sin.
1: और वो कहता है कि मैं इसलिए आपको ये खत लिखता हूँ कि आप गुनाह ना करें.
0: If someone has sinned,
1: अगर किसी ने गुनाह करा है,
0: we have a great advocate that is Jesus Christ on the right hand of the Father.
1: हमारे पास बड़ा एक वकील है जो खुदावंद के और परमेश्वर के

डियर फ्रेंड्स इन जीसस नेम, आप सभी का मैं बैतलहम पंजाबी चर्च की इस वेबसाइट में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं आप शायद इस वेबसाइट पर अचानक से आ गए होंगे, या गलती से आपका यहां पर आना हो गया होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, परंतु आप इस दुनिया में अचानक से नहीं है, आप एक्सीडेंट से नहीं है, या किसी गलती का नतीजा नहीं है। परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद और योजना के साथ भेजा है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को उतना ही गंभीरता और संजीदगी और सीरियसनेस के साथ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक मकसद रखा है। पवित्र वाणी कहती है कि आप इस दुनिया में निराश होने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और दुनिया भर के उलझनों में रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, जो कि आपको आशीष करें, आपको बरकत दें, आपको जिंदगी की ऐसी अच्छी चीजों से नवाजें कि आप एक खुशहाल, शांति भरी, भरपूर जिंदगी जी सकें। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को जानें। आज अगर आप किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जानें, अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानकर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में एक भरपूर जिंदगी को ग्रहण करें। वाणी कहती है कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें भेजा है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। आप इस वेबसाइट में जैसे ब्राउज करते हैं, बहुत सी चीजें आपके लिए है। आपके लिए यहाँ पर पवित्र वचन के सॉन्ग्स हैं, वर्शिप सॉन्ग है, म्यूजिक है, बहुत से आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए, ताकि आप और परमेश्वर को नजदीकी से जान सकें। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर को जान सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़ कर किताबों के जरिए से, बाइबल के पवित्र वचनों से, और कई और चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, ताकि आप गवाहियों को पढ़कर भी और मजबूत हो जाएं। मेरी प्रार्थना विनती यह है कि आप प्रभु को और नजदीकी से जानें। बैतलहम पंजाबी चर्च की सेवकाई आपके लिए इसीलिए है कि आपको बरकत दें, आपको

परमेश्वर के करीब लेकर आए और आपकी सेवकाई करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्ट है हमें लिखिएगा, प्रार्थना की विनती भी हमें लिखिएगा, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एज यू कंटिन्यू टू ब्राउज दिस वेबसाइट एंड एंजॉय गॉडली वंडरफुल म्यूजिक वर्शिप सॉन्ग्स एंड रीड आर्टिकल्स एंड नो गॉड ऑल द मोर। गॉड ब्लेस यू, रिपेंट ऑफ योर सिंस, नो गॉड पर्सनली एंड ड्रो क्लोजर टू हिम, worship him, find a good church and be there. If you want to come to us, find out our address.

हालेलुया जी, हम खुदावन का शुक्र करेंगे जिसने प्रसिस में और गीतों में हमारी रहनमाई की। हम उसका शुक्र करें क्योंकि वो ही जलाल का बादशाह है और वो यक्षा है और वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो है हम जबूर नंबर 118 में जो

प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, खुदा उनका शुक्र करेंगे, हालेलुया। और जितने भी हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं और उन सब की सलामती चाहते हैं। जहां जहां पर भी हुए हैं, खुदा उनको बरकत दे और खुदा उनके घरों में से तमाम तर जो अपनी शिकवतें हैं हम उनको बांध देते हैं यीशु के नाम से, और खुदा उनका शुक्र करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। रबा सिंथी रिया रजा मन थारा रजी रबा सिंथी क्रिया रजा मन था खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी सताइश और जलाल के बादशाह। हम उन तमाम तर लोगों के लिए, उन तमाम तर बहनों भाइयों बुजुर्गों बेटों और बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं जो इस वीडियो को देखे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके घरों में से कमजोरियां जाती रहे, बद्रूहे छोड़ दें इनके घरों को, लोग आजाद हो जाए। और खुदावन हम उन सब के लिए बरकत चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस प्रस्तुति के वसीला से खुदावन बड़ी बरकत मिले खुदावन, और ताकि वो तुझ में बढ़ते जाएं और हमें से, और खुदावन जो हमें सुन रहे हैं इनमें से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए, वो तुझमें बढ़ते रहें और तेरी प्रस्तुति और हमदो सना इसी तरह करते रहें। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी स्ताइश हो, श्री यीशु के अजीम और खूबसूरत नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जी। हालेलुया।

0: अनाउंसमेंट के दौरान मैं बता चुका हूं कि पास्टर विजय बेनेडिक्ट जो हैं मुंबई इंडिया से हैं.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: आज पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में आए हैं.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: मैं अजीज खुदावन के दास को काफी सालों से जानता हूँ.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: तो खुदावन के दास बड़े सामर्थ के साथ अभिषेक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तान और दुनिया के कई जगहों में.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: खुदावन की प्रस्तुति के गीतों में अगुवाई करने से पहले वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में गाया करते थे.
1: बिफोर ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू लीडिंग प्रेज एंड वर्शिप फॉर गॉड्स ग्लोरी ही यूज्ड टू वर्क इन हॉलीवुड इन बॉलीवुड.
0: पर उसके बाद खुदा ने उनको फुल टाइम के लिए अपनी खिदमत के लिए अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया.
1: बट देयरआफ्टर द लॉर्ड कॉल्ड हिम फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री अनटू हिमसेल्फ.
0: तो आज वो बिजी हैं खुदावन की खिदमत उनकी सेवकाई दुनिया भर में जो है गीत संगीत प्रस्तुति के द्वारा से.
1: सो टुडे ही इज बिजी ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्रू प्रेज एंड वर्शिप एंड म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड.
0: उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ हमारे बीच में आई हुई हैं.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: मैं ना ज्यादा बताकर वो खुद उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे बताएंगे.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: जिस तरह से हम हर बार अपने अजीज अपने जो गेस्ट हैं उनको हम स्वीकार करते हैं आज भी उसी तरीके से उनको स्वीकार किया जाएगा.
1: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
0: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
1: Amen. Pastor Vijay, आप आएंगे और हमें प्रभु यीशु के बारे में प्लीज बताएंगे.
0: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
1: आइए एक बार फिर इनका स्वागत करें. खुदावन को सारा जलाल सारी महिमा मिले.
0: Praise the Lord. Amen.

0: आपकी बारी है।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ करेंगे,
0: यीशु मसीह से प्यार करेंगे।

0: के मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना,
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु

0: आपकी बारी है, गाइए मैं और मेरा घराना।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु मसीह से बात करेंगे,
0: यीशु मसीह से प्यार करेंगे।

प्यारो उड़न ले प्यारो फादर जी किथे ने सर तुसी भी तैयार हो एक माइक्रोफोन इन्हां नूं होड़ दिओ हालेलुया 1 2 3 4

यीशु मसीह के नाल रोज चलना है, रोज बाइबल पढ़नी है, रोज दुआ करनी है, रोज यीशु मसीह का नारा लाना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम।

0: ये दूसरी बार या तीसरी बार हमारा जो है कॉन्सर्ट टुगेदर है.
1: And Pastor Anil Kant is a brother who's very dear to us. He has a great relationship with our church, with the family, extended family. And you know, this is probably the second or probably third time that he's here with us doing a concert.
0: खुदावन के दास कई जगहों पर खुदावन की सेवकाई को प्रस्तिश के थ्रू और मसीही सत्संग के थ्रू प्रचार रहे हैं.
1: And the servant of the Lord worships God and does ministry through the worship music ministry and also through Christian satsangs all over the world.
0: उनके बारे में मुझे इतना elaborate introduction देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों उनको जानते हैं. उनकी सीरीज, उनके worship, YouTube पर, internet पर सीरीज के थ्रू already आप सुन चुके हैं और आप जानते हैं.
1: We don't need to give you a big introduction for them because a number of you know about them. You follow them on the internet, you listen to their series and you know their ministry and the work that they do for God.
0: किस तरह से खुदा ने उनको एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस में मुंबई शहर में रखा है खुदा उनकी खिदमत को वहां से स्प्रेड आउट करने के लिए.
1: How God has placed them in a strategic city of Mumbai where they spread the word of God right from Bombay.
0: और वहां से खुदा उनकी खिदमत जगह जगह पर और वहां पर लोकल एरिया में भी कर रहे हैं.
1: And they do the ministry of the Lord from Bombay all over the world and also locally within Bombay.
0: वो सिर्फ गॉस्पल सिंगर नहीं है.
1: They're not just gospel singers.
0: वो खुदा उनकी खिदमत में लगे हुए हैं.
1: They are ministers of God.
0: Serving and winning souls.
1: जो रूहों को बचाते हैं उनको जीतते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए.
0: मसीही सत्संग इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर.
1: और मसीही सत्संग जो है वो बिल्कुल आग के लपटों की तरह फैल रही है.
0: तो फिर इसलिए मेरे हृदय में उनके लिए सिर्फ गॉस्पल सिंगिंग की जगह नहीं है, वो उससे ज्यादा बढ़कर हैं, पूरे खानदान के साथ लगे हुए हैं.
1: And that is why in my heart the place that I have for them is not just that of gospel singers but those who do ministry for the glory of God with their whole household.
0: उसके साथ साथ मैं उनको really salute करता हूं आज की शाम.
1: And tonight I just want to salute them.
0: अपने खानदान को खुदावन की खिदमत में लगाया हुआ है.
1: It's because they brought their whole household into the service and the ministry of God.
0: उनका रिजल्ट आज हमारे साथ है.
1: And the result of that is right here with us.
0: Amen.
1: Amen.
0: Without wasting much time, let's welcome Anil Kant and Shriya Kant in our midst.
1: और वक्त जाया ना करते हुए आइए स्वागत करते हैं ब्रदर अनिल कांत और उनकी बेटी श्रिया कांत का हमारे बीच में. हालेलुया.
0: Brother, come and tell us about Jesus Christ once again.
1: आइए आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के बारे में हमें बताएं आज. God bless you.
2: जब यीशु मसीह की हालेलुया. पास्टर जतिंदर गिल जी ने जो बातें कही इज जस्ट व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड अस टू डू. यू नो ईच वन ऑफ अस, नॉट जस्ट मी एंड माय हाउसहोल्ड, एवरी फैमिली दैट इज हियर टुनाइट, अ लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ फैमिलीज. And he has called each and every family, every husband and wife, every child and every young and old person to serve the Lord with, and love him with all your heart and all your soul and all your might and all your mind. Bolo Yeshu Masih ki. And I, mera bahut gehra rishta Punjabi Bethlehem Church ke saath hai. Aur brother Jatinder Gill, Pastor Jatinder Gill, hum hamesha touch mein rehte hain. Even on the Facebook, even we keep talking to each other. And when I was coming here, jab Pastor Jatinder ne bola ki it's a good opportunity ki hum yahan par aa sakte hain, I was overjoyed, Pastor, that you opened your church for us. Thank you so much. We just thank you. And Bethlehem Punjabi Church, Bethlehem yane roti ka ghar, Lehem yane roti, Beth yane ghar. और ये जो घर है ये रोटी का घर है, और वो रोटी जो जिंदा मसीह के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आई है, वो रोटी जिसको हम खुदा का कलाम कहते हैं, वो रोटी जो खाए वो कभी भूखा ना रहे, वो पानी जो पिए वो कभी प्यासा ना रहे. हालेलुया. तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. सबसे पहले प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सबको यहां पर इकट्ठा किया. खुदावन खुदावन आपका कलाम कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरमियान मौजूद हूं. और खुदावन आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है. पवित्र आत्मा हम आपका सामर्थ मांगते हैं, आज हम आपकी हुजूरी मांगते हैं, और हम आपकी खुदावन वो प्रेजेंस मांगते हैं खुदावन, जो टेंजिबल प्रेजेंस जिसको हम छू सकते हैं खुदावन, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आप जिंदा हैं और हम जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा को जानते हैं. खुदा कलाम कहता है कि यही नजात है कि हम सच्चे खुदा को जाने, और हम नजात पाए हैं क्योंकि हमने खुदा को जान लिया है और उसके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है, और उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदावंद आज इस कांग्रेगेशन में, आज इन लोगों के अंदर, इस जमात में जितने लोग बैठे हैं खुदावंद, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम आज हम सबको करना, आपने पूरे ट्रैफिक इन सब मुसीबतों के बीच में से हमको निकाल के यहां पहुंचाया, इसका मतलब आपकी कुछ मर्जी है आज की शाम, और वो मर्जी पूरी होगी, शैतान उसको बदल नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बढ़ा दीजिए।